जगत की मपु श्री कृष्णा कोक्ता चुराना दैतेंबा नुशीरबा सुरदा बासीबु खोंगलीबा ताइबंगी अरानबा खुदिंग ngakpiu ngakpi हैबा नहागनी।

राम की मनाई अचान बा कोलोई मिंगले निंग थी बा खुरुमजरी ननाई ना नुशी निंग थाउ मपारी राम की मनाई अचान बा ब्रजंग बली हनुमान।

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिगयो की पुंग तरा तारे मणिपुरी दा मरुओय बपाओ ताबिरसे
1: आकाशवाणी इम्फाल हौजिग फौबगी मरुओय बपाओ आइन थिंखबा लालौलो कांगलेपा कम्युनिस्ट पार्टी ताइबंगांग ब ग्रुप की मिओय सिंग खुलाई थादोक्तुना मणिपुर सरकार दा चंगजर पगी थौरम होम कमिंग सेरेमनी ngasi आहान बम्पनी पुराई फल्स की पेरेड ग्राउंड दा पंगतोकनी थौरम सिद मुख्यमंत्री युनाम खेमचान याउना अतेय मंत्री सिंग सरुप यागनी हौकीब इं नुयाईदे हूदना कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डेलिमिटेशन जे एफ दिन लाथोब पुंग निफुनीपान की जेनेरल स्ट्राइक मखाजा थरी जेनेरल स्ट्राइक असी राइजा एनआरसी तौद्री सेंसस पांथोप यारो है वफम यौना तोान तोानब दाबी तौरजना चंजनबी इंडिया मेट्रोलॉजिकल विभाग ने झारखंड अकनब नोंग चुगनी आइना रेड अलर्ट लाथोखे अमरोम उत्तराखंड की घरवाल रीजन की चिंग जिला अकनब नोंग चुगनी आइना सू विभाग मखा तारी झारखंड सरकार ने टीडीपीएल एजेंसी जे पी एस सी जे एस एस सी लिसिंगनी कुनमरी की परीक्षा हजिंग कैंसल तौखे जे पी एस सी जे एस एस सी एसपीरेंट्सी कुमरी लेप्तन खोज चंजिलगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वारीबी बीजिंग जम हितांगफम केरलम डायरेक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट तबी अहोरगनी हौदोपगी थौरम पोर्ट शिपिंग वाटर वेज की मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चीफ गेस्ट सरुक यागनी तरानीथोई सुब ब्रिक्स एनवायरमेंट मंत्री मीपम भारत अयुबूदी न्यू दिल्ली पांथोलगनी एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की मंत्रालय है मीपम ब्रिक्स लेबाग एनवायरमेंट की मतलब हेन अकुप वारोल खनगनी हूफूमा सुब सुब्रोत्रो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट न्यू दिल्ली की डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम अहोरगनी टूर्नामेंट हौदोपगी मैच अंडर 17 गर्ल्स मेघालय चंडीगढ़ लंबा थेगनी पाउ लोजरें

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी इम्फाल हौजिक पुंफोम असिदा लांथोक चरी तोंगान तोंगान बा सैसक पसिंग नसक बा गीत।

0: हेलो हेलो
1: हेलो। हाँ
0: गुड आफ्टरनून लेडीज की तरफ बुतराम नोक चरी कनाओ बिरो बनो मिंगले फम हाई बियो
1: लेडीज की तो हम वही दे रहे हैं।
0: मानी थरम असी लमदम से की नुपी ओइबी सिंगी दमक ता अखन नना थम जब थरम ने दु कनाओ बिरो बनो मिंगले फम हाई बियो
1: सॉरी रॉन्ग नंबर।
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯈꯟꯅꯅ ꯊꯝꯖꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯈꯛꯇꯗꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯉꯥꯏꯖꯔꯤ

0: हेलो,
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून कनाई बिरबनो।
1: बमन कपूरदगी सुनीता साइखोमने दा
0: सुनीता कमाई तौरी के नुंगाई रिब्रो हजिकान सिबो।
1: सजिके लबुक तन सा थाबन दना खैसि पोथा रग लैने मेदा
0: लौ सुरमिरो।
1: लौ सुरम बा असंग सिदि मुसा जाम थाएबा
0: होय होय लौ पेंग बा खैगि लौ हुना बबुदि किटंग थेंगे को लौ पेंग ना ब मतंग ओय ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯥꯏꯅꯣꯗꯤ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗꯝꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯈꯪꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯄꯣꯊꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯄꯅꯦ
1: Hello, madam.
0: ꯇꯥꯖꯔꯤ ꯇꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ
1: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯗꯨꯔꯥ?
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯤꯃꯤꯟꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯊꯝꯖꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤꯀꯣ?
1: ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ.
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯑꯥꯐꯇꯔꯅꯨꯟ ꯂꯦꯗꯤꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯕꯒꯤꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯦ ꯊꯝꯖꯕꯅꯦꯕꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯊꯝꯕ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯣꯟꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ, ꯐꯣꯟꯗꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯁꯤꯕꯣ?
1: ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯋꯥꯈꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯪꯗꯦꯅꯦ ꯐꯣꯟ ꯐꯪꯕꯁꯤꯗ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯗꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯃ?
1: ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯖꯩꯌꯦ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤꯀꯣ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧ ꯁꯨꯅ ꯁꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯣ, ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯧ ꯁꯨꯅ ꯁꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯣ, ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯂꯔ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯗ꯭ꯔꯥ?
1: ꯍꯣꯏ ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ,
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ,
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯔꯦ.

0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: गुड आफ्टरनून। कनाई बिरबनो।
1: मेरा भाई कहते को जगह जगह घूमने से जगह थी नहीं मेरा।
0: सही तो बती, सही तो बती है भी ब्रह्मिंग दो। होय होय, ऐसे की गुड आफ्टरनून लेडीज की। कोई की लाइन से कितना नुआई तब रा न चल गना। कोई इनाक तो रेडियो सेट कुंबले भी ब्रा। हेलो, होय होय, कोई इनाक तो रेडियो सेट कुंबले भी ब्रा। होय होय, कितन लैपटॉप पियो खै गी ताबद सो आइन सुको मय कितन सेंग बवाले दुग थरम से मे अम्पुन्ना याम ख्रब मियाम नि तामिन रिब नु आइना याम सेंग न तामिन न ब। हाय बियो, हाय बियो ताजरे।
1: आ या खै ना हाय जने गदि मि जरी थौ फ्रग न
0: थौ कैसु काय दे ताजरी ताजरे। हाय बियो। आ
1: रहा है इन हाइजेन वाली इमा तंजी अवल इबांग अपन प्लान की जाप न मकवा अब वैसे अब से लगता है अदना अरे ले रो ब्रश्मे आने यो इधर यों खाने में खाने दे से जो वो मुझे तुम ये सीधे खाने दे ना जा तो वैसे ये तुम ले रे अदना चीम बता वैसे कोई काम जाती है ना मायू ना जा जिन दी वैसे काम जब है तारे सकता
0: हाय बियो, हाय बियो, सिना लोई बिरा ब्रा।
1: ओ मसा नो मा हाजे ने राम आई ना सी जा हान बोय ने
0: होय होय, पापा खत बि ब्रा हान बोय ने वरी सा बसी बो।
1: अरे ये पाखते रे जान
0: खै गे हान ब कॉल फंग बोय बगी हाइनिंग बदी हान दि सि हाय गे काइन खल ग फोन ने वरी सा र कान दन काउ थु कि बगुम बग याउ ब्रा। হয় হয় এখন আম নাই ওয়ারি সারি পাখতনক পুকনিং ফাউব নাইবসিং হাই মাম পুনে খাব ফজব ওখলদ ফোদপিউ নাই ইংরি হয় হয়তবটি আকাশবাণী ইমফাল মাইকাই আহানব ওই সাব ফজব মখা তাব থরম হাই গুড আফটারনুন লেডিস নতবো গুড ইভিনিং মণিপুর অরসু গুড মর্নিং হলো হকসেল লেপ্তন থরম তাবিগরম সরু ইবিরু মখা তাব থরম হয় হয় হয় চেকসিন খুৎপাই চেটন পাইসনবির হাইজব তারেতো মখা তাবসম থরম সরু হয় হয় তাব থরম থেকে মখা তাব কলার গাইমিনে
1: থাকচারি।

0: हेलो, कॉल तो भीर अमग लाइन से तत्क्रब माले मकब हेलो हेलो
1: हेलो मैडम,
0: गुड आफ्टरनून. तराम नोकचरी मिंग लाइफ हम हाइबियो
1: मैडम. आई योर बुम अंदर को करेगी मिलता है
0: मैम सा मैम चा है बीब्रा.
1: हाय मैडम.
0: हाय हाय मैम चा कमाई तो रिगे हो जी कांसी बुनु आई रिब्रो
1: मैडम. वाई हम दी आदा बिनु आई रिया जे कारे मैडम.
0: हाय हाय मैं बगी एक हो मैं बगी पाव कम ने हाइज बता रे को हो जी चिपुंग से दी कोई ठेंगे चाहे सिंगा दी जाकर ब्रो कमाई तो रे.
1: मैडम अंत तो पाबरे
0: तारा ब्रा. हेलो
1: तारे
0: तारे मिदा. हाय हाय अखोई पुंग से दिन युमि युंग फन याम लांदा रे बको असि कि चा इसिंग गादि चा ख्रब रा हंगि बा
1: ताजे मिदा.
0: हाय हाय अखोई ने रेडियो सेट कुम इनाक त लेबि ब्रा हल्ला ग इको गि टाइप त लाक पदों तवे.

0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून तराम नौचरी.
1: गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून तराम नौचरी. मिंग लाइफ हम हाई बी हो.
1: मैडम आई नंबर के आई दजी वाहिंग बम लांग लेन है मैडम.
0: लांग लेन को लांग लेन यम नुगाई जे इंगसी का वरी साबा मुख पंग जबको हाई बी हो करी करम वाफम पुखत पी गनी.
1: मैडम आई न सुन खंजा बगी वानी को
0: होय होय
1: अखोई समाज जी थाना बगी तुमतुंगदा मिरो मिरोन थाहौना बगी थाना अखोई बॉक्सिंग कैसिना तवरम बथाबक सिंदगी दि खोजिना मो अमो खेनबा वाखन लौसिंग अफा फबा मयाम अमो खेना मुथो एबगो
0: होय होय
1: तोय इबॉक्सिंग जिना तवरम बज तवरम बंगांगम बथाम बसिंदगी खोंगुल लिबा वाइना तवरगा अफा फबा वाखन खोजि थोलाइ ब मयाम जे तवरगा खोइ मुति जिना अफावा खंजी पुथोगा इसा इशु हिंजी थाहनबा दु ओइरगा थाना बगी मरमदी मामा सु मपा सु तंग गदाउ निपो अदै दुदा मामा सिना मरु वइना लुसिनगा ए बा याम सेक्शन बदो होय
0: होय
1: मसा मसा हिंजी सेक्शन बसे मामा सिना ता से कमाई तौरी कराय द सली खा खोली है बना सेक्शन बसी तौर कांदा अफा बदु ओइरगा दी इमो मनोंगा.

हेलो हेलो, कोई टेलीफोन तौबीर अमग लाइन से तत्किबा माले मखा ताबा कॉलर अमामुंगाई मिनसे।

0: हेलो
1: हेलो
0: ताजरी ताजरी गुड आफ्टरनून रेडिस के थरम दा तराम नोक चेरी मिंग लाइफ हम हाई बियो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो ताब्रा
0: ताये ताये ताजरी ताबी दब्रा
1: ओ ता तारे तारे ऐ जे पाखत ले बा अम कोंग तो बजे
0: हाय हाय
1: फोन नंबर जु इबाय दबा
0: हाय हाय नसिन आहन बो इबिदोरा
1: sino khwai aham bani ai je ai gao ai yang ai je la phai dei jume poko
0: hoi hoi
1: thang da ba de huji che aham maning de yeng gol mai manak te hakik la ga thong la ga thi mai na tau di je
0: hoi hoi akai
1: ga ma ra we
0: ma mang de so ahan ba kol ra moina wari sa ba phang jak reng asi amuka su huji su ko wari ano ba hai di ma mang da amuka phang jiba ma khak ni wari sa na ba phang jari si am nu ngai je khoi su mai am pun na ming lai phamam tang khang min asi
1: ओ आईजी मिंगदिने
0: होय होय
1: कैनो ने आ लेबम न पुंगो मम हम्म तोंग ले काय
0: हम्म
1: मेमा तिबाय जम
0: पुंगदोंग बम देगी मेमा
1: ओ
0: इसागी चही क्या मुसु बिदोइनो
1: ओ आई चही हुफु मंगा मुसु रे
0: होय होय अकोइ नदी इमा कौ जबया बजानी को
1: औ या बजानी या दोई बीच माइन वरी छाप जो

शुक्रिया आदित्य। नमस्कार, 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित इम्फाल के संगाई चैनल का ये है गीतों और नगमों का कार्यक्रम संगीत में गीतमाला। और गीतमाला के अंतर्गत अभी आप सुनने जा रहे हैं मेरे संग यानी अपने दोस्त वैलेंटीना के संग फिल्म संगीत का ये सुहाना सफ़र।

दोस्तों सफ़र शुरू करते हैं। तो सफ़र ये होगा हमारा आज का सफ़र, शुरुआती सफ़र का ये करेगा सफ़र का उद्घाटन, और यही है उद्घाटन गीत। बस प्यार पे कुर्बान और राहत देने वाला ये गीत है विशाल मिश्रा और हंसिका परीक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सैयारा और इस फिल्म में नज़र आए थे आहान पांडे के साथ खूबसूरत चंचल अनिल पड्डा। ये गीत राजशेखर द्वारा है और संगीत विशाल मिश्रा द्वारा।

0: तेरे।
1: और दोस्तों, मध्यम मध्यम चल रहा है ये दिल की रवानिया, और साथ में ये गीत है विकी कौशल और शारा अली खान पर फिल्माया गया। इस गीत पर जरा हट के जरा बच के फिल्म से निर्देशक लक्ष्मण उत्तेकर की ये फिल्म है, और आवाजें अरिजीत सिंह के साथ सचिन जिगर की। अमिताभ भट्टाचार्य के लेखन पर ये गीत और संगीत सचिन जिगर द्वारा।

फिर गूंज उठता है गीतों के सरगम के साथ, और हमें मिलता है, हम पहुंचते हैं केदारनाथ, जहां प्रेम अपने खुशबू पर छलका रही है। सूरज की किरणों के साथ पहाड़ों के रंग लिए केदारनाथ फिल्म से ये गीत है। सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान पर फिल्माया गया ये गीत है। RSVP मूवीज के बैनर तले बनी ये फिल्म। इस गीत की आवाज़ें अरिजीत सिंह के साथ निकिता गांधी की हैं। अमिताभ भट्टाचार्य के लेखन और संगीत प्रदान किया अमित त्रिवेदी ने।

और जैसे दिल की आस मिल गई हो, जैसे संगम हुआ हो दिल के साथ संगीत के तारों के साथ। ये गीत है नीति मोहन की आवाज में मिस्टर एंड मिसेस माही फिल्म से। सागर और हनी बनी के गीत संगीत में बनी इस गीत को आप सुन रहे हैं। फिल्म निर्देशक शरण शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही से।

0: शादी कर सकते हैं।
1: बड़ी उलझन में है दिल, पर उलझा हुआ ये दिल बयां करता है बेफिक्र होकर, सुलझे हुए अपनी इस प्रेम कहानी पर दोहराता है अपनी दिल की कहानी। मस्कारा ये गीत है, ये नया गीत है फिल्म मैं वापस आऊंगा से। इरशाद कामिल की रचना पर बनी ये गीत है, एआर रहमान द्वारा संगीत। गीत में आवाजें नीलांजा घोष दश्तीदर और साथ में फिल्म के मुख्य कलाकार वेदांग रायना की आवाज में।

और ऐसी अदाओं पे कुर्बान कुर्बान हुए जा रहे हैं। जब खनकती है ये चूड़ियां, बोलती है ये चूड़ियां दिल की आवाज। आइए सुनते हैं बोले चूड़ियां फिल्म से ज्योतिका टांगरे की आवाज में, राघव सचार की संगीत और लाडो सुवाल का द्वारा बोल।

और दोस्तों हमें ये लग रहा है हर पल कि ये संगीत, ये धुन हमें आप और हमारे गीतमाला के बीच की ये फासले को ले जा रहे हैं कुछ और। अगली बार इसी आशा के साथ मिलते हैं कि प्यार बरकरार रहे। गीतमाला की ये कशिश आप जारी रखेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।

गीत माला की थरुम ताबिरी थरुम संदोकतने तांजरी बसे आकाशवाणी इंफाल की एफएम संगाई चैनल दगिनी हौजिक पुंगफम सिदा दोम की दमक अमुक लानथोक चरी अरीब मणिपुरी फ्लम मदि मतमिसे खुदोल गी अहन बोइन तामिनसे अरोइब बिदाई फ्लम सिदगी खुन जॉय मास्टर जयानंद मदि सुनीता गी अपुन बखोंजेलदा एम के जितना सैरिंगबा खुन जॉयना सैरंग बेसे

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: थोरम संदोक्तु ने तहन जरीबा से आकाशवाणी फालगे FM संगाई चैनल दगिने हौजिक पुंगफम सिदा अमुक लानथोक चरी रेडियो क्लास थोरम असी की चामरी निफु निपान सुब तांकता क्लास 8 के इंग्लिश लेशन 10 द स्कूल बॉय थोरम असी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इज समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंगबांग लोइनना संदोक चब थोरम ने

थोरम संदोक तुने तान जरीबा से आकाशवाणी फालगे एफएम संगाई चैनल देखनी हाउसिक पुंगफम सीधा ताबिरीबा सिंगी दमक अमुक पूजे रखली तोंगान तोंगान बा मणिपुरी फिल्म सिंग देगे लोकचब इसे सिंग खुदोल ये हान बा ओइना तामिनसी हु चागे फिल्म सीधा नाउबोई पुष्परानी अमदी शुरमा गे अपुन बा खोंजेल दा हेरोजित नाउरोइबम ना सैरिंग बा सोरी सेंजम ना सैरंग बा इसे

नहारोल की खंजल ताबीरे थरम संदोकना ताहन जरीबासी आकाशवाणी इम्फाल की एफएम संगाई चैनल दगने हौजी पुंफम असिद मिकुप खर की मतुंग दा नुमिदांग की पुंग तरेट का मिनट निफु मंगा फाउबा कंगला चैनल अमदी संगाई चैनल की थरम सिंह कंगला चैनल दगी पुन्नताबा फंबीरगनी

0: soiba me kendra gi mayekta hamom na banasak paisa ese tahan jakhiba ga loinana ngasi gi oinadi good evening manipur gi thoram matang ase da lotion jari thoram da saru gi abira khiba ma di thoram asi buloi ba phau pata biri ba khuding makpu amuk kahan na thagat ba phongdok jari thoram sadok na tahan jari ba si akashbani imphal gi fm sangai channel da gine
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर

0: आकाशवाणी इम्फाल हौजिंग नुमिदांगी पुंग मापन तारे मणिपुरी द पाउ ताबिरसे
1: आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी न पाउ पाजरी मणिपुर सरकार की मसनसर पम्बीसक डॉक्टर सापम रजत नाहिरी अथोब मतमदा मणिपुर की एमएलए कांगबू उम्मा पुन्ना दिल्ली जतुना केंद्र की लुसिंग बसिंग मसुंग केंद्र सरकार दा एनआरसी की वाफम असी कन्ने तक्षिल उरगनी मदुदा कानगदब पाखुम सोयदन फंगनी हाइबेगी थाजबले इम्फाल लंगसी पाउगी मिफम मदा वांगांग मदा मागनाय राइजसी दा डेमोग्राफी की खल कायरक पमसुंग आइन काइन मितोप चंगसिल पकी वाफम मसुंग नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस एनआरसी मसुंग मिकोक थिबी की वाफम मसी सरकार ने याम लुम लवी मागनाय मणिपुर दा एनआरसी तोगदबनी हाइपसी इनकुमजा लिसिंगनी कुलिथोय की ऑगस्ट मंगा दा राइज विधानसभा नो वारे ब्लॉकरे वारे बदु अमुक हनसु अयाबा पिखरे वाफम असी याम लुम लौबग लोइना राज्य सरकार ने लिसिंगनी कुलुम दोई की जनवरी 13 तारीख ता केंद्र की गृह मंत्रालय दा आई

बसेरोल थादुना सो दक्षिण खराय कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन जे एफ डी ना मणिपुर एनआरसी तौदना मिकोक थीबे यारोय हाइब दाबी दक्षिण दुना कौबा पुंग निफु निपाल के जनरल स्ट्राइकिंग असी अहुबो नुमिता मियाम की महौसा की पुंसी दा साउन अकाइब थोकली Tampaki zila pumno magta kaitela musung dukan sing tong hang nekide. Thau pam sing tong lon ki. Lambi da passenger puba gari senatre. Strike sokot pasing na lambi da thorong tuna mapam kaya da lambi tingli. Imphal West zila ki samuro kaitel da samuro naurem apun meira pai bi mati. Hauri bi ki meira pai bi sing na pun na sinduna wakat mipam sataki. Aini tingkraba lup KCP taibangan ba group ki. मियोय निफुतरु खुलाई थादुक्तुना मणिपुर सरकार द संगसखरे इम्फाल गी अहानब मणिपुर राइफल्स के पेरेड ग्राउंड द पांगथोकपा होम कमिंग सेरेमनी दा मखोइना नोमई कुन नोमई मरु सनी तरा तरुक एक्सप्लोसिव अहुम पिखलखि थरमदु द मुख्यमंत्री युमनाम खेमसनाई खुलाई थादुक्तुना संगसरक लब पुमनु मक्त सरकार न पिबेया ब मतेंग पुमनु मक पिगनी मागनाई मखोइत सरकार गी रिवाइज सरेंटर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लिसिंग नितरा निपन गी मखादा सेल गी तेंगबांग सिंग पी गनी बदी मखोइनि हिंग बद मतेंग ओइनाबा सरकार न मखोइत स्किल दे युमफम ओइबा ट्रेनिंग पी गनी श्री केमसान हाई राइज असिद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी सन हनब दाबे एदु सरकार न सौकली एदुबु बन सिंग ब कोबुदी यालिंग दे मागनाई बन गी महुता गणतंत्रिक ओइबा अतोपा पामे सिंग सिजन हनब खंथगत बनी बनना स्कूल अमसुंग कॉलेज मैरोसिंग अमदी नोंमगी कुसुमल तांचरी बमियोसिंग द अकाई बेपी मागनाई राइजेसिद लेरी बमियाम न खुलाई थादोक लबतदा शांति लेगनी असम राइफल्स ना नहा सिंग बुपुलिंग थोकत पा मसुंग मरे बाग नुंसी बा पो नबगी वाकलोन दा हर घर तिरंगा कैंपेन लिसिंग नि कुतरुक कक्सिंग जिल्ला गी वाइखोंग अमदी सांतेल जिल्ला गी ओल सोमतल विलेज द ngarang pangthokre कैंपेन अदुदा खुनसा कुनथ्रा मपन मसुंग अंगंग कुनमंगा पुन मे हुंफु मरी न सरुयाकी अमरोम दा असम राइफल्स ना सिंधुना लाखतुरीबा अग्निवीर रिक्रूटमेंट रैली की मांगोनना टेक्नोपल जिला की मोरेद लैबा नहा कुनथ्रा मरी दा मोक फिजिकल टेस्ट पंथोखरे केंद्र की एनवायरमेंट फॉरेस्ट मसुंग क्लाइमेट चेंज मंत्री भूपेंद्र यादव नहरी ब्रिक्स लैबाक सिंगना अमत ओइना थौसिल सेमबा टेक्नोलॉजी मसुंग लैबाक सिंग असिगी मियाम की याइफनब पुन होनमिने बतंगाई फदे नई दिल्ली के भारत मंडापम दंगसी पांगथोकी बा तरानिथुई सुब ब्रिक्स लैबाक सिंगी एनवायरमेंट मंत्री सिंगी बिफम द मंत्री नहाई लैबाक सिंग असिगी मंत्री सिंगना पुन सरुक यामिनेदुना माउसागे मसुंग अकोइबे की फिबम हेन फगलन ब पुन खन्नमिने बतंगाई फदे मागनाई भारत की ओइना अपुनमा मई पुथोपगी सांग तंखायमदि क्लीन एनर्जी तिगी ओहेन मंगमले मसी ब्रिक्स लैबाक सिंगी ओइलासु तंगाई फदब म ओहेन गतबनी मसीना लैबाक सिंग असिना पुन अकोइबेगी फिबम मसुंग इसिंग नुंगसिर की फिबम फगलनबद साउन कानब पिगनी मसीगे दमक ब्रिक्स एनवायरमेंट वर्किंग ग्रुप मा संगत पतंगाई फदे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग ईसीएमएस स्कीम की मखादा सरकार ना एप्लीकेशन कुंथ्रा मतो हेनबगी अयाब पिखरे प्रोजेक्ट असिद पुन लुपा कोटी लिसिंग तरेट सानिपान हुंबुद्रा तरेट थादगनी हैरी मसी अयाब पिखिबग लोलेना अपुनब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की पोथोक लुपा कोटी लिसिंग मलिफुली थोइरोम पुथोकब गमलगनी हाइबगी थाजब थमली मसीदा मियोय लिसिंग मापन समंगा हेना थबक फंगनबगी खुदोंसाबसु फंगलगनी केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक मसुंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णोना नई दिल्ली पांगथोक थोरमद एप्लीकान सिंह मसीग अयाब से खुशी स्कीम मसीग मखाद पोथोकतोरी पोथोक मनुंग एसीटेलिन ब्लैक स्पीकर मसुंग माइक्रोफोन सिंह ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर्स कैपासीटर मसुंग कोयल सिंह यावरी पाउ लोइजरे

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान। दोस्तों, ये शाम थोड़ी सी ठहरी हुई है और शायद इसी ठहराव में किसी की याद भी आपके पास बैठी है। कहते हैं प्यार बड़ी बड़ी बातों में नहीं बल्कि उस छोटी सी मुस्कान में छुपा होता है जो किसी का नाम सुनते ही चेहरे पर आ जाती है। आज की ये शाम उन्हीं नामों के लिए है जिन्हें हम दुनिया से तो छुपा लेते हैं लेकिन अपने दिल से नहीं छुपा पाते। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही बेहतरीन से गीत के साथ जिसे आवाज दी है मुकेश ने।

हर प्रेम कहानी का अंत मिलना हो ये जरूरी तो नहीं। कुछ कहानियां अधूरी रहकर भी पूरी जिंदगी साथ चलती हैं। किसी को चाहना और फिर उसी की खुशी के लिए चुप हो जाना भी तो प्रेम का ही एक रूप है ना। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन वो हमारी यादों से कभी नहीं जाते। और इसी खामोश मोहब्बत के नाम अगला गीत।

0: दोस्तों हाजिर होता हूं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगा जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और शमीम है अभी आपके साथ।

दोस्तों, पहली मुलाकात की सबसे प्यारी बात यह होती है कि तब हमें ये पता ही नहीं होता है कि सामने वाला हमारी कहानी का हिस्सा बनने वाला है। एक छोटी सी नजर मिलती है, कोई मुस्कुरा देता है और फिर दिल चुपचाप अपना फैसला सुना देता है। वक्त गुजर जाता है मगर वो एहसास अक्सर वहीं ठहर जाता है। आइए उस पहली मुलाकात की मासूमियत को इस खूबसूरत से गीत के साथ महसूस करते हैं।

दोस्तों, किसी रिश्ते में सबसे खूबसूरत शब्द शायद मेरा नहीं बल्कि अपना होता है, जहां आप बिना कुछ साबित किए बिल्कुल वैसे ही रह सकते हैं कि जैसा कि आप हैं, जिसके सामने आपकी हंसी भी सच्ची हो और आपकी कमजोरी भी पूरी तरीके से सुरक्षित हो। वही तो अपनापन है। और इसी अपनापन भरे एहसास के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का एक और यादगार गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीना का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। आज शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। उन्होंने बताया कि अभियान का लक्षित समूह 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवा पेशेवर होंगे। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है।

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए चार स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की फॉरवर्ड लाल रेमसियामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने कुल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। मिजोरम की लाल रेमसियामी 2017 से भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के ऐतिहासिक चौथे स्थान हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के राजकुमार पॉल ने 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया। वह पेरिस 2024 ओलंपिक में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम का हिस्सा थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by V.C. Pramod. BRICS nation today reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of the 12th BRICS Environment Ministers meeting in New Delhi today said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges while advancing sustainable development and poverty eradication. India is chairing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has emphasized the need to produce high-quality agricultural products that meet global market standards. He said it can be done by educating farmers about various modern technical tools. The minister was addressing the 97th Annual General Meeting of the Indian Council for Agricultural Research, ICAR, in New Delhi today. The minister also administered the Saptadhara of Shakti Pledge to officials of both ministries in national capital. Mr. Chauhan said, through Shakti Ki Saptadhara, Prime Minister Narendra Modi has presented a clear roadmap for building a developed India. India Today said that the credibility and robustness of its election machinery are well established globally. Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, stated this while briefing media in New Delhi this evening. Mr. Jaiswal was responding to US President Donald Trump's praise for India's election system and his reference to Chief Election Commissioner Ganesh Kumar's remarks on the lack of voter identification in US elections. On massive earthquake in Indonesia, Mr. Jaiswal said, India is deeply saddened by this tragedy. On the reports of India receiving energy requests from Bangladesh, Mr. Jaiswal said, India has an ongoing energy cooperation with the neighboring country.

0: This is Akashwani. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं और सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स ड्रॉप्स नियरली 500 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,200. रीजनल रूरल बैंक्स रजिस्टर ओवर 10% राइज इन ग्रोस लोन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख. सेंसेक्स में लगभग 500 अंकों की सुस्ती और निफ्टी 24,200 अंक से नीचे पहुंचा. और ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में पिछले एक साल के दौरान 10% से अधिक की वृद्धि और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल. और तमाम खबरों पर चर्चा के लिए आज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आर्थिक विशेषज्ञ सुषमा रामचंद्रन. सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
0: वार्म वेलकम सुषमा.
2: थैंक यू राजेश. थैंक यू निखिल.
0: बिफोर वी प्रोसीड, हियर्स अ डिस्क्लेमर. द व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स इन दिस प्रोग्राम आर देयर ओन एंड नॉट दोज ऑफ आकाशवाणी. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 0.63% यानी 493 अंक नीचे आकर 77,235 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 0.55% यानी 133 अंक लुढ़क कर 24,155 पर बंद हुआ. सेंसेक्स में लगातार तीसरे दिन सुस्ती आई जबकि निफ्टी छठे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ.

0: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक आज 0.4% नीचे आए जबकि स्मॉल कैप में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। इससे पहले आज सुबह कमजोर वैश्विक संकेतों की वजह से बाजार लाल निशान के साथ खुले थे।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्सेस एंडेड इन द नेगेटिव टेरिटरी टुडे। द सेंसेक्स डिक्लाइंड 493 पॉइंट्स और 0.63% टू क्लोज एट 77,235। The Nifty slipped 133 points or 0.55% to settle at 24,155. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index fell 0.4%, while the small-cap 100 index remained unchanged. The Sensex extended its losing streak for the third consecutive session, while the Nifty closed lower for the sixth straight day. While the markets opened lower amid weak global cues, both indices remained under pressure and traded in a range-bound manner through most of the session. However, towards the fag end of the session, the markets extended their decline amid selling pressure ahead of the weekly expiry of Nifty futures and options contracts.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 22 कंपनियों के शेयरों में आज नुकसान दर्ज हुआ। सबसे अधिक नुकसान वाले शेयरों में एशियन पेंट्स 2.4%, इन्फोसिस 2% और एचसीएल टेक 1.9% शामिल थे। वहीं इसके उलट एक्सिस बैंक में 0.9%, पावर ग्रिड में 0.7% और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 0.5% की बढ़त दर्ज हुई।
1: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द बीएसई 21 आउट ऑफ 28 सेक्टर्स एंडेड विद लॉसेस। Among the top laggards, focused IT declined 1.8%, information technology dropped 1.7%, and realty lost 1.3%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt advanced 0.3%, hospitals as well as healthcare increased by 0.25%, and auto added 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 1,930 advanced and 216 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 7 पैसे कमजोर हुआ और 95.68 रुपए पर बंद हुआ। सुषमा एक बार कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है।
2: थैंक यू
0: सुषमा, आज अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो दोनों सूचकांक दबाव में रहते हुए ज्यादातर समय तक एक सीमित दायरे में कारोबार करते रहे, लेकिन कारोबार के आखिरी सत्र में निफ्टी फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स की साप्ताहिक एक्सपायरी से पहले बिकवाली के दबाव के कारण बाजार में गिरावट देखी गई। और साथ में अगर हम पिछले दो हफ्ते की बाजार की चाल देखें और अब तक के दो दिन के इस हफ्ते का कारोबार देखें तो गिरावट का जो रुख है वो क्या कहानी कहता है, हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए बात यह है कि ये जो हमारा हमारे स्टॉक मार्केट जो है, मैं हमेशा कहती हूँ वो सेंटिमेंट ड्रिवन है, और इस वक्त सेंटिमेंट जो है वो इसके ऊपर जो जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में यूएस और ईरान के बीच में, उसके बारे में सेंटिमेंट जो सारे इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में है उनकी सोच उनके ऊपर है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो तेल के दाम है वो ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, वो वॉलिटिलिटी बहुत हो रही है आज के दौर में। एकदम से वो तेल के दाम, कच्चे तेल के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, दे हैव रीच्ड $91। तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, हमारी 85% अब आप फ्यूल रिक्वायरमेंट हम बाहर से ही मंगवाते हैं, तो इससे जो इन्वेस्टर्स की थोड़ा सा वो रुख बदल गया है ये पिछले दो तीन हफ्तों से। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है, ये जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, और तेल के अलावा बाकी सारी जो काफी सारी प्रोडक्ट जो वहां से आती है वेस्ट एशिया से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तो का तो ब्लॉकेड है, बाकी रेड सी के बीच में से मर्चेंट शिपिंग के भी वहां पर तकलीफें आ रही हैं, क्योंकि यमन में से वहां अटैक हो रहे हैं। तो एक तो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है, और दूसरा ये है कि सारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इमर्जिंग मार्केट्स को छोड़ के अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, वो वहां के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं और उनके जो रिटर्न्स हैं वहां पर ज्यादा बेहतर हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं, मतलब और भी मैं चीजें गिरा

0: सकती हूँ, लेकिन बहुत टाइम लगेगा।
1: मुनाफा वसूली का कैसा रुख देखने को मिला है इन दिनों के दौरान, खासतौर पर अगर डीआईएस की हम बात करते हैं तो?
0: खासकर हाँ जी,
1: डीआईएस की, घरेलू निवेशकों की बात करते हैं तो?
0: हाँ बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुकिंग की भी बात है, लेकिन हमारे जो घरेलू निवेशक हैं वो ज्यादातर इस वक्त वो अभी भी इनकी जो फेथ है हमारी मार्केट में वो जारी है, और इसी वजह से हालांकि फॉर एफआईआईज हमें छोड़ के जा रही है, बड़े दबादब इस वक्त जा रही है, लेकिन बीच में अभी हाल ही में तो वापस भी आ रही थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, क्योंकि यहाँ की जो असेसमेंट ये था कि वैल्यूएशन अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं
1: जी।
0: तो अब हम वापस आ सकते हैं, लेकिन अब फिर जो रुख बदल गया है और वो चले गए हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल इस वक्त तो खैर प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रही है, लेकिन वैसे वो इतना ज्यादा वो बेरिश ट्रेंड्स नहीं है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के।
2: Sushma, IT was among the biggest laggards today. So, is the weakness linked to valuations, US demand concerns, or the currency factors or profit booking?
0: I would say these are long-term issues as far as IT services are concerned. The perception that, you know, IT services are not going to be able to match the, you know, match the kind of AI technology that has sprung up in the United States. So I think that it is linked to that. And the fact that, of course, that in America, things, the stock markets are rebounding just now at a time when ours are going down. We have to remember that for America, when for the U.S., when oil prices go up, while it might be uncomfortable to consumers, the fact is that they, as an exporting nation, producing an exporting nation, for them, it comes as a benefit. So the situation is very different. And coming back to IT services, the perception has been for quite some time that there is going to be a problem with the IT services industry because of the introduction of AI. And I think that's not really so. You're going to have so many more applications of AI, and it's going to be these IT services companies which are going to be doing that kind of work on applications.
2: Okay. Auto and pharma, Sushma, showed relative resilience today. Is this defensive positioning or evidence of sector-specific strength?
0: I would say it's sector-specific strength because, you know, pharma is definitely one of our strongest exports, one of our strongest sectors. And auto, of course, as, you know, you must have read the reports, the demand has risen exponentially, and even in rural areas, that was the area that people were worried about, two-wheelers, there also the demand has gone up. So auto is an area that is certainly doing well. Even in exports, auto is doing well. So certainly I think that is a strength for both these areas.
2: Okay, and also the Indian equities, as you very rightly pointed out, they came in under pressure today with the Sensex falling 493 points and the Nifty extending its losing streak. Now, is this a temporary bout of risk aversion, or is the market signaling a more meaningful change in trend?
0: Well, that's very difficult to say right now, because we would have to see the market for a while. I know, of course, the market has been, going down in the last few weeks. There has been a bearish trend. But I think more of what is happening in the market is a reaction to external developments and the perception that, what is happening between U.S. and Iran could have an adverse effect on our growth.
1: सुषमा, थोड़ा सा अगर पीछे जाकर के हम आपसे बात करें तो जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, 707 अरब अमेरिकी डॉलर तक के हम पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां पर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट की जो बात है, विदेशी मुद्रा का एक इनफ्लो उसमें आया है, तो इससे आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब लिक्विडिटी बढ़ाने की बात है और स्टेबिलिटी होनी चाहिए रुपए में और देश की एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेंथ को भी मजबूत करने की लगातार बात हम कर रहे हैं?
0: देखिए, ये जो स्कीम बनाई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उससे बहुत फायदा हुआ है, मतलब इनफ्लोज की बात आपने की, ये एनआरपी की वजह से हुई है, और

0: उससे इतना सपोर्ट रूपी को नहीं मिला जितना सोचा जा रहा था
1: जी.
0: और रूपी डिप्रिसिएशन खैर हम समझ सकते हैं कि वो कम मतलब हॉल्ट हो गई है बंद हो गई है डिप्रिसिएशन लेकिन वो स्ट्रेंथन नहीं हुआ है
1: जी.
0: रूपी तो ये थोड़ी सी शायद आरबीआई माइट बी लिटिल कंसर्न अबाउट दैट पर मेरे ख्याल में क्योंकि हमारे एक तो हमारे रिजर्व्स बहुत बड़ी बहुत अच्छे हैं इस वक्त और दूसरी एक बहुत अच्छी बात है हमारा जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो बहुत ही छोटा है इस वक्त मेरे ख्याल ये जो जून के क्वार्टर में अप्रैल में जून क्वार्टर में जिसमें ये अभी ये वॉर हुआ था और जिसमें इतना डर लग रहा था कि हम बहुत ज्यादा बहुत महंगा तेल इम्पोर्ट कर रहे हैं इससे करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा लेकिन मेरे ख्याल 0.6% ही हुआ है हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट.
1: सुषमा इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे जो इस तरह के कदम उठाए गए हैं आरबीआई की तरफ से सरकार जो भी प्रयास कर रही है उन्हें हम मतलब किस तरह से देखती हैं क्या ये इस तरह के कदम आगे भी उठाए जाने की संभावना रहती है जहां पर स्टेबिलिटी देने की बात हम करते हैं तो.
0: हाँ देखिए आरबीआई ये वक्त वक्त पर ये कदम उठा देती है अभी ये एफसीएनआरबी का जो ये इतने स्कीम्स आए हैं वो इसी वजह से थे टू नॉट जस्ट टू स्ट्रेंथन द रूपी इनका ये था टू गिव मोर कॉन्फिडेंस टू इन्वेस्टर्स ये भी था कि इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए और ये हम ये कि हमारे यहाँ रुपीस मतलब डॉलर्स डालने से उनको आराम से उनको निकाल भी सकते हैं तो यहाँ डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं तो ये इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस हो जाता है. इसमें साइड इफेक्ट ये है कि मतलब रुपी की डिप्रिसिएशन कम हो गई लेकिन जैसे मैंने कहा कि इतना वो अप्रिशिएट नहीं हुआ रुपी लेकिन जो गिरने की जो तकलीफ हो रही थी वो तो कम हो गई है. हाँ अगर आगे आगे के दिनों में और कुछ मतलब उस कोई डिफिकल्टीज आती हैं तो आरबीआई ये वक्त वक्त पे ये स्कीम निकालती रहती है.
1: जी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी ने पिछले एक साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है. छोटे शहरों और गांवों का कुल बकाया ऋण 2024-25 में लगभग 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण की सुविधा का विस्तार किया है और जरूरतमंद तबकों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कमजोर वर्गों को 3,49,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है. सुषमा इस तरह की जो खबर है अगर आर्थिक मोर्चे के नजरिए से देखें तो क्या समझ सकते हैं इससे हम.
0: देखिए मुझे असल में ये खबर अच्छी तरह से सुनाई नहीं जी थोड़ा सा आप संक्षेप में बता देंगे क्या बोले आप.
1: जी मैंने ये बोला कि वित्त मंत्रालय ने ये कहा है कि 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तरफ से जारी किए गए हैं.
0: अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ तो ये जो क्रेडिट फ्लोज जो है ये एकदम से बहुत बढ़ गए और रीजनल रूरल बैंक से ये क्रेडिट फ्लोज बढ़े हुए हैं ये बहुत ही पॉजिटिव मेरे ख्याल डेवलपमेंट है और यही एक इनफैक्ट काफी कमेंटेटर्स ने इसके ऊपर बात की है कि जो जो इस वक्त काफी इस वक्त ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं और शायद हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं है लेकिन अगर आप ये क्रेडिट फ्लोज की तरफ देखें तो ये दिखाया जा रहा है कि एक्चुअली हमारा जो इंडस्ट्रियल नहीं इसका जो क्रेडिट पिकअप जो है वो काफी बढ़ गया है और आने वाले दिनों में लगता है कि कंजम्पशन और बढ़ जाएगा.
2: मूविंग ऑन डिफेंस मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द 6 पॉजिटिव Indigenization list, PIL, comprising 405 strategically important items with an estimated business potential of 3,070 crore rupees. These include 16 items of the Indian Coast Guard and 389 items of defense public sector undertakings. The list contains line replaceable units, subsystems, subassemblies, spares, components, and raw materials. The ministry said that

0: sixth PIL marks another step in the government's efforts to promote self-reliance in defence manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. It is expected to further expand opportunities for the Indian industry, strengthen the domestic defence manufacturing ecosystem, promote investment and innovation, and contribute to reducing dependence on imports. The ministry informed that the detailed list of items is also available on the Srijan portal, srijandefense.gov.in. Sushma, this is a step towards self-reliance in defense manufacturing and also towards making in India, giving it a big boost.
1: Yes, in fact, defense is an area of great progress in recent years. Not only are we manufacturing within the country, we are exporting also. So India has become a fairly large arms exporter. And of course, there have also, since the private sector is now being involved more and more, not just in defense, but in space. So you have so many now private, public-private collaborations, as well as private collaborations with foreign companies, you know, which are now coming forward and setting up. So it's one of the big, I would say, success areas in the manufacturing sector.
2: आगे बढ़ते हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भारत अमेरिका साझेदारी को अब पारंपरिक व्यापार और निवेश से आगे बढ़कर साझा निवेश, सहयोगी नवाचार तथा सहभागी विकास और निर्माण की दिशा में आगे जाना चाहिए. वे आज मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने अमरीकी कंपनियों को अपने राज्य में आमंत्रित करते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र को भारतीय और वैश्विक विकास के लिए एक मंच के तौर पर इस्तेमाल करें. श्री फडणवीस ने राज्य की प्रतिभा, बुनियादी ढांचे, बाजारों, प्रौद्योगिकी और वैश्विक संपर्क बढ़ाने पर बल दिया. वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाने के लक्ष्य का आपसी साझेदारी है, जो कि बहुत ही बेमिसाल क्षमताओं को दर्शाता है. सुषमा, आज ये जो बैठक हुई मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री ने अमेरिकी कंपनियों को अपने राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
1: देखिए, ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है. हालांकि इस वक्त जो है, हम सब लोग ये इंडो यूएस ट्रेड डील जो है इसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये जो है, ये कोलैबोरेशन इन इंडस्ट्री, ये भी उतना ही महत्व, मतलब इतना ही इम्पोर्टेंट है. क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमेरिकी कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करे. लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी अमेरिकी कंपनीज हैं, यहाँ बेस्ड हैं, यहाँ उन्होंने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन ये बढ़ना चाहिए. और इस वक्त जो अमेरिकी कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा निवेश चाइना में किया है, तो उतना तो वहां से, अब वहां की जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं लग रहे, तो धीरे धीरे करके वो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं चाहते हैं कि चीन में बेस्ड जो अमेरिकी कंपनीज यहाँ आनी चाहिए. लेकिन इसके लिए हमें अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा, मतलब थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहिए. तो मेरे ख्याल में ये वार्तालाप से काफी कुछ पैदा होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज फिर हमें बताएंगी कि क्या तकलीफें हैं वहां यहाँ आने के लिए, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफें हैं, वो बता देंगे, और उससे ये जो प्रोसेसेस हैं
0: streamline ho sakti hai. So, Sushma, both the ambassador and the Indian delegate also said that taking India-US bilateral trade to $500 billion by 2030 reflects the unmatched potential of the partnership between the two countries. Now, does this reflect anything that will take place soon between the India-US trade deal? Is it moving towards that?
1: We really can't say, because the Indo-US trade deal seems to be moving at a snail's pace. You know, I mean, we have been waiting for it since last year. And we keep hearing from both sides that, you know, it's just on the verge of being concluded. And yet it doesn't come. And in the meantime, we have all these stories coming in about tariff imposition under Section 301.

0: exhibiting companies from more than 40 countries. Prime Minister Narendra Modi will chair a roundtable conference with global CEOs from the United States, Japan, South Korea, Singapore, Germany, the Netherlands, and Malaysia. The theme of the fifth edition of the Semicon India conference is Silicon to Systems, Building the Ecosystems.
1: एशियाई शेयर बाजारों में आज जापान का निक्केई 225 2.5% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.5% नीचे आ गया.
0: Global crude oil prices rose for the third consecutive session today amid uncertainty over a potential peace deal between the US and Iran. Brent crude was trading 0.5% up at $91.36 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.7% up at $85.07 per barrel when reports last came in. Very quickly, Sushmat, what oil price does the situation become materially negative for India's inflation and external balances?
2: Well, it's difficult to say, but definitely $91 is not a comfortable level for India. I mean, we would prefer it to be in the range of, say, $70 or even up to $80. Above that is definitely not comfortable for a country which is importing such huge quantities of crude oil.
1: आगे बढ़ते हैं. सोना मामूली गिरावट के साथ आज 1,54,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 1% से अधिक की तेजी के साथ 2,33,164 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. सुषमा, जिस तरह से गोल्ड की गिरावट और बढ़त का जो एक सिलसिला है, बहुत ही सीमित दायरे में हम देख रहे हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, वही हाल चांदी का भी है. क्या लगता है इस मार्केट से आपको?
2: देखिए, गोल्ड का जो इस वक्त गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट माना जाता है और इस वक्त की जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स वगैरह हैं, पिछले दो सालों से गोल्ड की कीमत एकदम से बढ़ गई है, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मेरे ख्याल इस वक्त थोड़ा सा प्लेटो पे आ गई है. साथ में चांदी का भी दाम बढ़ गया. चांदी को हम सेफ हेवन एसेट पहले नहीं कहते थे, पर मेरे ख्याल में अब ये भी बन गया है क्योंकि इसकी भी खरीदारी ये सेफ हेवन एसेट माना जा रहा है इस वक्त. तो क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, मेरे ख्याल अब ये थोड़े प्लेटो हो रहे हैं, लेकिन बहुत नीचे नहीं आएंगे.
0: सुषमा, व्हाट इज द वन की मैसेज दैट यू विल गिव टू द इन्वेस्टर्स? शुड दे रिमेन कॉशियस, यूज द करेक्शन टू अक्यूमुलेट क्वालिटी स्टॉक्स, और वेट फॉर ग्रेटर क्लैरिटी ऑन क्रूड, जियोपॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स?
2: आई थिंक नंबर वन, ऑफ कोर्स दे हैव टू टेक अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑलवेज, एंड the second is that you have to look at the quality of the company.
0: They have to be cautious.
1: जी सुषमा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
2: Thank you,
0: Sushma, for being with us. And before we close, the headlines once again. Benchmark domestic indices decline, Sensex drops nearly 500 points, Nifty settles below 24,200. Regional rural banks register over 10% rise in gross loan outstanding last year, and global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, good night.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है और अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणियों का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच चुनाव आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। मतदाता आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल से डिजिटल पहचान पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि करीब 12 लाख मतदान केंद्रों के लिए मतदाता

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आप सभी के साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। निशिगंधा में जो आज पहला गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है पूर्णिमा और आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और वो क्या कहते हैं ना कि ये जो मन के मौसम में समय के साथ बदलाव आता रहता है या यूं कहें कि मन के मौसम का भीगना किसी दुख का संकेत नहीं होता, सिर्फ कभी-कभी एक बहुत खूबसूरत सी फीलिंग, बहुत सुंदर अनुभूति के कारण भी मन के मौसम में थोड़ा उथल-पुथल होने लग जाता है। जैसे किसी स्मृति में छिपी आत्मीयता का अचानक सामने आ जाना, किसी आवाज की पहचान भीतर तक उतर जाना, या फिर किसी पुराने प्रेम पत्र का एक वाक्य बहुत देर तक अगर साथ ठहर जाए। और तब ये जो इमोशंस होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो शब्दों से ज्यादा काम करने लग जाती हैं और मन उन बातों को फील करने लग जाता है, या यूं कहें कि मन उन बातों को महसूस करने लग जाता है जिन्हें कभी नहीं कहा गया या जिन्हें शब्दों में ढाला ही नहीं गया। और मन ऐसे संबंधों को भी समझने लग जाता है, उनके भीतर छुपे हुए भावों को समझकर मन के मौसम में थोड़ा उथल पुथल होने लग जाता है और भीतर की जो ये संवेदनाएं होती हैं, ये फीलिंग होती है, ये हमें सबसे ज्यादा मानवीय बनाने का काम करती हैं। और यही फीलिंग मन के मौसम को नम कर करके ये मन की जो जमीन है उनको उर्वर बनाती रहती है। सुन रहे हैं आप निशिगंधा और अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म तुमसा नहीं देखा से।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है तीसरी कसम, आवाज है आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है फागुन।

की तरह बदलता रहता है। कभी-कभी बिना कारण के भी मन के मौसम में नमी आ जाती है और कभी-कभी ये मन का मौसम भी ना बड़ा रूखा सा हो जाता है। और कभी-कभी क्या होता है कि कुछ अनकही बातें मन के भीतर परतों की तरह जमा होने लग जाती है। कोई पुराना प्रसंग याद आकर मन को भावुक भी कर देता है और कभी-कभी बहुत छोटी सी बात भी मन को बहुत चोट पहुंचा जाती है। किसी अपने का बहुत छोटा सा नजरअंदाज कर देने वाला व्यवहार भी मन के अंदर घर बना लेता है। आंखें कारण खोजती हैं और मन अपने अर्थ को तलाश करता रहता है। और इस लड़ाई में, यूं कहें कि मन की इस लड़ाई में इंसान जो है ना, वो क्या कोशिश करता है कि वो खुद को नॉर्मल दिखाने की, यानी कि सामान्य दिखाने की कोशिश करता है, पर वो होता सामान्य नहीं है। भीतर की संवेदनाएं जो हैं, वो अंदर ही अंदर व्याकुल करती रहती हैं और मन हर बार एक जगह ठहर कर कारण तलाश करता रहता है। बीते हुए जो पल होते हैं, वो वर्तमान को अफेक्टेड करने लग जाते हैं, उस पर अपना असर डालने लग जाते हैं और मन जो है वो उलझा पुलझा अपने ही प्रश्नों के बीच और न जाने कितने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लग जाता है। और यही बदलता मौसम, जब कहीं से कोई और संवेदनाओं की एक छोटी सी बूंद लेकर भी मन के ऊपर एक नमी पैदा करता है, तो वो रिश्ता हमें सबसे ज्यादा करीब लाता है। और ऐसे में मन जो है वो सारे प्रश्नों के उत्तर तलाश करना छोड़कर थोड़ी देर ठहर कर बैठ जाना चाहता है। तो मन की और भी बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं एक सुंदर सा गीत। फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में, आवाज है लता मंगेशकर की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में हम बात कर रहे हैं मन के मौसम की। जनाब ये जो मन का मौसम है ना, इसकी कहानी ऐसी है कि जितना लिखो जितना बोलो उतना कम है, क्योंकि मन के मौसम को शब्दों में बांधना ये जीवन का सबसे मुश्किल टास्क है। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इस मौसम के बहुत सारे रंग हैं और ये जो सारे रंग हैं ना, ये रंग हमारी भावनाओं के रंग हैं और भावनाएं शब्दों में बांधी जा सके ऐसा हो ही नहीं सकता। पर कहते हैं ना कि हम अपने जीने के अंदाज को बदलकर, सोचने के अंदाज को बदलकर हम मन के मौसम को अपने अनुसार इसमें बहुत सारे रंग भर सकते हैं। बहुत पुराना एक सुंदर सी पंक्ति है, बहुत पुरानी, कि कहते हैं कि सांस लेने का

नाम है जीना साहिर, तो सांस लेने के भी अंदाज बदलते रहिए। जी हाँ, एक तरह से जीवन जीते जीते कई बार जीवन भी ना बेरंग सा महसूस होने लगता है। तो कहते हैं कि जीवन को बदलने के लिए या जीवन में और सारी रंगों को भरने के लिए हमारे मन के मौसम का भी बहुरंगी होना जरूरी है। संबंधों को एक बार फिर से जीवित करने की जरूरत होती है, कुछ बातों को इग्नोर करने की जरूरत होती है और फिर जीवन जीने का सलीका बदल कर हम मन के मौसम को भी बहुरंगी बना सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं, जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी को ला सकते हैं। और कहते हैं कि एक पॉजिटिव सोच 100 दरवाजे खोलती है सफलता के, इसलिए अपनी सोच में पॉजिटिविटी को बनाए रखिए। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर, आवाज है मुकेश की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

जिस तरह मन के भावनाओं को या मन के मौसम को शब्दों में बांधना, शब्दों में ढालना सबसे मुश्किल टास्क है, ठीक वैसे ही प्रेम को लिखना दुनिया का सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम। कहते हैं कि हमारी प्रीत का कुछ इस तरह बंधन हुआ होता, हमारी प्रीत का कुछ इस तरह वंदन हुआ होता, तुम्हारा मन हुआ होता, हमारा मन हुआ होता, बिठाकर नाव में तुझको नदी के पार पहुंचाता, बिठाकर नाव में तुझको नदी के पार पहुंचाता, जो तुम लहरें हुई होती और मैं साहिल हुआ होता, जो तुम लहरें हुई होती और मैं साहिल हुआ होता, हमारी प्रीत का कुछ इस तरह वंदन हुआ होता। वक्त आ चला है आपसे एक बार थोड़ी देर के लिए विदा लेने का। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, 2:10 पर कार्यक्रम होगा गीत सुहाने और हम होंगे आपके साथ। फिलहाल छोड़े जाते हैं एक गीत के साथ, फिल्म का नाम है राजा और रंक, आवाज है मोहम्मद रफी की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
1: The impact of climate change,
2: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
1: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच चुनाव आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। इस बीच वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। सरकार ने घरेलू PNG कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना का उद्देश्य देश के ज्यादा से ज्यादा घरों तक साफ, सुरक्षित और किफायती पाइप्ड गैस पहुंचाना है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के

भी पहुंचने से नाराज हैं। इस बीच ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार हॉर्मुज जल डमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर एक मिसाइल से हमला हुआ। एक ईरानी अधिकारी ने कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान की शर्तों को पूरा नहीं करता तब तक जलमार्ग दोबारा नहीं खुलेगा। FIH हॉकी विश्व कप में कल भारतीय महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। अब भारतीय महिला टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने की ये खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयति। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

मैं सब लिख लेता हूं, मैं सब लिख लेता हूं, मन याद आंसू। मैं झरने पहाड़ आकाश भी लिख लेता हूं। मैं लिख लेता हूं वो तमाम रास्ते जो होकर गांव लोगों तक पहुंचते हैं। मैं लिख लेता हूं वो तमाम रास्ते जो होकर गांव लोगों तक पहुंचते हैं। मैं सब लिख लेता हूं, बस मेरी लिखावट में कभी घर नहीं आ पाया। बस मेरी लिखावट में कभी घर नहीं आ पाया। मैं सब लिख लेता हूं, मन याद आंसू। मैं झरने पहाड़ आकाश भी लिख लेता हूं। आप सुन रहे हैं गीत सुहाने, और अब जो गीत आप सुनेंगे आवाज है भूपिंदर और लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है किनारा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयति। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है ज्वेल थिफ। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है आकाश दीप और आवाज है लता मंगेशकर की।

लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे लोग रिश्तों की हिफाजत में बहुत कुछ लिखते रहे मैंने उसका नाम भी लिखना मुनासिब न समझा मैंने उसका नाम भी लिखना मुनासिब न समझा अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में और फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब जो

वक्त आ चला है एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर और कार्यक्रम होगा रात सुरमई। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर और आवाज है मुकेश की। मिलते हैं 2:10 पर, कार्यक्रम होगा रात सुरमई।

0: ریاست میں محمد زبیر بھارت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پریاورن سے جڑے پریاس لوگوں پر کیندرت ٹکاؤ اور وکاسشیل دیشوں کی واستوکتاؤں کے انوروپ ہونے چاہیے کیندری پریاورن ون اور جلوائیو پریورتن منتری بھوپیندر یادو نے کل نئی دلی میں برکس پریاورن منتریوں کی بارہویں بیٹھک میں کہا کہ برکس کی ادھیکشتا کے دوران بھارت کا کام پردھان منتری نریندر مودی کے ویژن سے پریرت ہے اس میں گلوبل ساؤتھ کی چنتاؤں کو ایجنڈے میں سب سے اوپر رکھا گیا ہے اور برکس کو سہیوگ تتھا استھرتا کے لیے سمایوجن تتھا نواچار کو بڑھاوا دینے والے منچ کے طور پر پھر سے پریبھاشت کیا گیا ہے श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन जैव विविधता के नुकसान प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमरीकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं मतदाता फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है असम सरकार ने बच्चों की सुरक्षा और कल्याण के लिए असम राज्य बाल संरक्षण नीति 2026 को मंजूरी दी है मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि इससे बच्चों की देखभाल से जुड़ी सरकारी और निजी संस्थानों में एक समान सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी कैबिनेट ने असम औद्योगिक संबंध नियम 2026 को भी मंजूरी दी है पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों की उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट जारी की है रिपोर्ट में उद्योग निवेश रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा सुशासन सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में किए गए कार्यों का उल्लेख किया गया है रिपोर्ट के अनुसार राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं में भी तेजी आई है दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को पेंशन का आधिकारिक पत्र 26 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाले भव्य कार्यक्रम में सौंपा जाएगा सरकार ने बताया है कि 1 सितंबर से पेंशन की राशि सीधे पात्र महिलाओं के बैंक खातों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी विदेश मंत्रालय में सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने फिलिस्तीन के विदेश मंत्री और प्रवासी मामलों की मंत्री वारसेन अघाबैकियन शाहीन से मुलाकात की फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने भारत फिलिस्तीन द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है दो क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं इस बीच ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार हॉर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ
1: This is Akashvani, The news read by

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई की खूबसूरत महफिल और आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है सावन को आने दो और आवाज है यशुदास की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। एक बड़ी सुंदर सी बात है जीवन से जुड़ी हुई कि जीवन हर मोड़ पर उत्तर नहीं देता, वह पहले जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के साथ में जीना सिखाता है। अधूरेपन से अगर मन विचलित होने लगे तो पूर्णता का मूल वो कभी नहीं समझ पाएगा। पूर्णता के मूल को समझने के लिए हमें अधूरेपन के साथ भी जीना सीखना होगा। हर असमंजस के भीतर एक नई दृष्टि का द्वार खोल देता है ये जीवन। यदि हम उससे भागेंगे नहीं, तब एक दिन जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि कठिनाइयों ने रास्ता नहीं रोका था, वे बस हमें हमारे पहचान तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रही थी। और इंसान का सबसे सच्चा उत्तर उसे बाहर कहीं नहीं मिलता, हर प्रश्न का जवाब हमें खुद के साथ खुद के अंदर ही मिलता है। तो है ना खूबसूरत सी बात। आप सुन रहे हैं रात सुरमई। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में और फिल्म का नाम है अर्पण।

0: बात नहीं कर रही, मुझसे नाराज हो क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या?
1: नहीं।
0: तो फिर गुमसुम क्यों हो, क्या बात है?
1: एक तो परदेश जा रहे हो,

0: कहते हो एक साल क्या है, देखते देखते निकल जाएगा।
1: धत तेरे की, बस इतनी सी बात है।
0: छोड़ो।
1: देखो शोभा, यू नाराज मत हो, मैं तुम्हें रोज खत लिखा करूंगा और हर हफ्ते टेलीफोन भी करूंगा। सच पूछो शोभा, अगर तुम और तुम्हारा प्यार मेरी जिंदगी में न होते तो मैं प्रदेश नहीं जा पाता। अब तो मुस्कुरा दो।
0: उफ़, ये सूट और टाई मेरी पसंद के हैं। जब भी किसी पार्टी में जाना इसे पहन के जाना, इसमें तुम बहुत हैंडसम लगते हो।
1: अच्छा, मान लो बहुत हैंडसम देखकर वहां की कोई लड़की फिदा हो गई
0: तो मैं समझूंगी वो लड़की मुझसे भी ज्यादा समझदार और अकलमंद है।
1: जलन नहीं होगी?
0: बिल्कुल नहीं। अगर तुमने उसे शादी भी कर ली तो भी मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हें चाहती रहूंगी
1: शोभा।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनने जाएंगे आप सुनेंगे, इस फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए और आवाज है लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं रात सुरमई। दिन ढल जाता है और शाम आती है। शाम जब आती है तो कुछ अच्छी बातें भी अपने साथ लेके आती है। शाम कहती है कि जैसे दिन ढल जाता है वैसे ही जीवन में अगर दुख है तो दुख भी ढल जाएगा। हर परेशानी की भी एक शाम होती है और उसके बाद आती है उम्मीदों की सुबह। और जब हम अपने डर अपनी चिंता इस शाम के हवाले कर देते हैं तो फिर जैसे शाम ढल जाती है वैसे ही दुखों की भी शाम ढल ही जाती है।

शाम कहती है कि जो उम्मीदों की सुबह होती है उसके लिए बड़े धैर्य से रात के प्रहर में गुजरना पड़ता है, यानी सुख और दुख के बीच का जो पहर होता है ना, वो थोड़ी बेचैनी, थोड़ी घबराहट और मन को बार-बार बेचैन करने वाली वो रात होती है, वो पहर होता है। पर जब हम उस वक्त में ठहरना सीख लेते हैं, थमना सीख लेते हैं, तो वो वक्त भी गुजर जाता है ना, अच्छी सी बात। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है सौदागर, आवाज है कविता कृष्णमूर्ति, मनहर और सुखविंदर की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

और वक्त आ चला है आप सभी से विदा लेने का। तो चलते चलते हम आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और 3:10 पर मीना होंगी आपके साथ। फिलहाल छोड़े जाते हैं एक वादे के साथ यानी फिर मिलने के वादे के साथ और एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है अर्पण, आवाज है लता मंगेशकर की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

0: देखिए, हमारा 5-स्टार होटल है। यहाँ पर हमेशा कैबरे के प्रोग्राम ही पसंद किए जाते हैं। सिर्फ एक बार हमने कव्वाली का प्रोग्राम रखा था
1: जी,
0: जो गेस्ट ने बिल्कुल पसंद नहीं किया।
1: मैनेजर साहब, मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ, आज तक हमारा एक प्रोग्राम नहीं हुआ जिसे देखकर देखने वाले खुद उठकर हमारे साथ नाचने नहीं लगे। हमारी पार्टी पंजाब की सबसे मशहूर पार्टी है।
0: नाम तो मैंने भी सुना है।
2: तो एक बार काम भी देख लीजिए ना। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब।
0: गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग। ये मेरी बेटी है सोना।
0: ओह, आई सी।
1: हमारे ट्रिप के हर तरह के प्रोग्राम को यही लीड करती है।
0: ओह, प्लीज सिट डाउन विद सोना।
2: शुक्रिया।
0: चाय?
2: जी नहीं, शुक्रिया, मैं चाय नहीं पीती। मैनेजर साहब, एक प्रोग्राम करने का मौका दीजिए, उसके बाद देखिए आप हमें पूरा सीजन नहीं जाने देंगे, ठीक है ना बाबा?
0: ओके,
1: धन्यवाद।
2: थैंक यू वेरी मच।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और

0: ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत का बांग्लादेश के साथ ऊर्जा सहयोग जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया है। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई जाएंगे। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और शाम नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से 1 महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली में हाल ही में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के खिलाफ हिंसा के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड लाल रेमस्यामी और पुरुष टीम के मिडफील्डर राजकुमार पॉल को अर्जुन पुरस्कार 2025 के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। खेल मंत्रालय ने 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति इन खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगी। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी आई अरु मेघनायन को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2025 से सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. BRICS Nations has reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of 12th BRICS Environment Ministers' meeting in New Delhi yesterday said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 3:11 और 7 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

दोस्तों जानते हैं कुछ रिश्ते जिंदगी से दूर होकर भी दिल से दूर नहीं होते समय कितना भी बदल जाए कुछ यादें हमेशा हमारे साथ रहती है इसी तरह का आइए सुनते हैं अगले गीत में

जिंदगी के सफर में बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा भी होता है जिसकी मौजूदगी पूरी दुनिया को खूबसूरत बना देती है। ऐसी मोहब्बत हर किसी के हिस्से में नहीं आती, और जब आती है तो जिंदगी यादगार हो जाती है, बिल्कुल इस गीत की तरह।

दोस्तों रात की खामोशी में कुछ यादें और भी गहरी हो जाती हैं। दिन भर हम खुद को कितना भी व्यस्त रखें, लेकिन रात होते ही किसी अपने की याद चुपके से दिल के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। कुछ लोग दूर होकर भी दिल के बहुत करीब रहते हैं और उनकी याद आए तो बस यही शब्द दिल से निकलते हैं।

दोस्तों, किसी को अपने दिल में जगह देना आसान नहीं होता, लेकिन जब कोई खास शख्स दिल में बस जाए ना, तो उसकी मौजूदगी हर पल महसूस होती है। रात की शांत फिजा में जब दिल सबसे करीब होता है, आइए याद करें उस खूबसूरत एहसास को जब किसी को दिल में बैठाकर सारी दुनिया ही हसीन लगने लगती है।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। समय हो चुका है 3:38 और 37 सेकंड। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, सावन की फुहारों में एक अलग ही मिठास होती है। रात की खामोशी, बाहर बरसती बूंदे और दिल में उठती किसी अपने की याद। लगता है जैसे मौसम भी चुपके चुपके दिल की बात कह रहा हो। कभी बारिश की बूंदे सिर्फ पानी नहीं होती, वो कुछ भूली बिसरी यादों को भी साथ ले आती है। आइए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत में।

बहारें जब दिल को छूती है ना तो किसी खास की याद आना स्वाभाविक है। इसी मीठे इंतजार और प्यार भरे एहसास को सुनते हैं इस गीत में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही मीना चौहान को दीजिए इजाजत, नमस्कार। 4:10 पर आपके साथ रहूंगी कार्यक्रम अरुणिमा में। थोड़ी देर में आप सुनेंगे

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए समायोजन तथा नवाचार को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भारत इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर

0: राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के चुनाव प्रणाली की प्रशंसा करने और अमेरिकी चुनावों में मतदाता पहचान पत्रों की कमी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता सर्वविदित तथ्य है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की चुनाव प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान बैंकिंग फॉर यूथ शुरू करेंगे। कल शाम नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा है कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। ये फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय दौरे पर चेन्नई जाएंगे। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मई में यह अनुमान 6.7% था। हालांकि रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि अल नीनो मौसम और भू राजनीतिक चुनौतियां आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को प्रभावित कर सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ हॉर्मूज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये मुकाबला अहम है। क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच गोल में पहले टेस्ट मैच में आज श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 84 रन पर 4 विकेट से आगे खेलेगा। भारत जीत से 6 विकेट दूर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. BRICS Nations has reiterated their commitment to strengthening collaboration on environmental protection and sustainable development. A joint ministerial statement adopted on the conclusion of 12th BRICS Environment Ministers' meeting in New Delhi yesterday said, BRICS nations also reaffirmed their commitment to advancing the full and effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, the United Nations Framework Convention on Climate Change, and its Paris Agreement. The countries emphasized that enhanced international cooperation, including availability of finance from developed countries, is essential to enable developing countries to effectively address environmental and climate challenges. India is sharing BRICS this year with the theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. The BRICS ministers also expressed their appreciation for India's leadership in advancing the circular economy as an enabler of sustainable development. Union Home Minister Amit Shah will be on a two-day visit to Chennai. He will be attending the South India Chief Ministers' Conference at a private resort at Kovalam near Chennai. The Home Minister is scheduled to arrive there today. He will address the Chief Ministers' Conference on Thursday. Chief Ministers of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana and Puducherry will attend the conference. The Anti-Corruption Branch ACB of Delhi government has arrested former minister and AAP leader Satyendra Kumar Jain, IAS officer and former CEO of Delhi Jal Board Udit Prakash Rai and four other accused persons in connection with irregularities and criminal conspiracy in the tendering process relating to augmentation and upgradation of sewage treatment plants of the Delhi Jal Board. The case was registered against them on the complaint of Directorate of Vigilance. Indian Coast Guard's Daman Air Station conducted a swift operation to save the lives of nine fishermen who were stuck in a sinking boat. According to an official press release, the station received a distress call and immediately launched a Chetak helicopter to the location. The rescue operation was conducted successfully, bringing all fishermen to safety. While three injured fishermen received first aid at ICGAS Daman, they were subsequently shifted to a government hospital for further medical treatment. India Meteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall conditions today in places over East and West Uttar Pradesh, East Madhya Pradesh and Uttarakhand. Parts of Northeast India, Delhi, Haryana, Chandigarh, Bihar, Chhattisgarh, Coastal Karnataka, Himachal Pradesh, Jharkhand, Kerala and Mahi, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim are also likely to receive moderate to heavy rainfall today. The weather department also predicted thunderstorms and lightning today over north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Hockey India congratulated Indian women's hockey team forward Lalrim Siami and Indian men's hockey team midfielder Rajkumar Pal on being renamed recipients of the prestigious Arjuna Award for the year 2025 as announced by the Ministry of Youth Affairs and Sports. The two hockey stars feature among 17 sportspersons named for the Arjuna Award 2025 across disciplines, with the President of India set to confer the honours at a ceremony at Rashtrapati Bhavan. In men's cricket, hosts Sri Lanka will resume their second innings at the overnight score of 84 for 4 on day 4 of the first test match of the series at the Gale International Stadium in Sri Lanka today. Sonal Dinusha and Dhananjay De Silva remained at the crease when stumps were drawn last evening. Earlier, India were bowled out for 193 in their second innings, setting Sri Lanka a target of 372 runs. India were dismissed for 462 in their first innings, while Sri Lanka made 284 runs. The second and final test of the series will be played in Colombo from the 23rd of this month. In hockey, the Indian men's team will face arch rivals Pakistan in a crucial Pool D encounter of the FIH Men's Hockey World Cup in Amstelveen, the Netherlands today, with both teams battling for a place in the next round. India, currently on 3 points from 2 matches, need at least a draw to secure qualification. Pakistan, on the other hand, have just 1 point after 2 games. The Indian women's team produced a dominant 6-1 victory against South Africa in their second group stage match at the Wagner Hockey Stadium in Amstelveen last evening. With this win, India climbed to the top of Pool D with 4 points from 2 matches. And that is the end of this news bulletin.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है 4:11:05। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका देती है कुछ नया करने का, खुद को फिर से पहचानने का। उम्र कोई भी हो, नई शुरुआत के लिए कोई तारीख तय नहीं होती। जब दिल कहे कि फिर से जीना है, तो कदम आगे बढ़ाइए।

दोस्तों कुछ गीत सिर्फ सुना ही नहीं देते बल्कि चेहरे पर मुस्कान भी ले आते हैं किसी की अदा किसी की चाल और उस पर दिल का यूं बेवजह खुश हो जाना यही तो पुराने गीतों की खूबसूरती है जिंदगी में हर वक्त गंभीर रहने की जरूरत नहीं कभी-कभी खूबसूरत पल को बस मुस्कुराकर महसूस भी करना चाहिए तो आइए सुनते हैं ये गीत

दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो हमारी सोच पर पूरी तरह छा जाता है। फिर दिन हो या रात, काम हो या आराम, ख्याल बार बार उसी शख्स के पास जाता है। शायद मोहब्बत का असर ही कुछ ऐसा होता है। दिल में कोई बस जाए तो फिर कुछ और याद कहाँ रहता है।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 MHz पर। समय हो चुका है 4:29 और 20 सेकंड। कार्यक्रम चल रहा है अरुणिमा और मैं हूं आपके साथ मीना चौहान।

दोस्तों, सुहाने सफर में कुछ ऐसे गीत होते हैं जो अपने साथ मुस्कुराहट और थोड़ी सी शरारत भी लेकर आते हैं. किसी की मीठी बोली, किसी की प्यारी सी अदा और किसी को देखते ही दिल का खिल उठना. मोहब्बत की शुरुआत अक्सर ऐसे ही मासूम एहसासों से होती है. तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत.

सुबह की इस खूबसूरत वेला में एक नई शुरुआत का एहसास अपने मन में उतर आता है। जिंदगी में कुछ चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है, जैसे कली को फूल बनने में वक्त लगता है, लेकिन उस इंतजार में भी एक खूबसूरत उम्मीद छुपी होती है। इसलिए आज की सुबह खुद पर भरोसा रखिए, अपने सपनों को थोड़ा वक्त दीजिए और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए।

सुबह की खूबसूरत शुरुआत अगर किसी प्यारी मुलाकात की याद के साथ हो तो पूरा दिन जैसे मुस्कुराने लगता है। जिंदगी में कुछ मुलाकातें महज संयोग नहीं होती, वे हमारे सफर में एक खूबसूरत याद बनकर आती है। रिश्तों को संभाल कर रखिए, क्योंकि किसी अपने का साथ जिंदगी की मुश्किलें आसान कर देता है। आइए सुनते हैं इसी एहसास को इस गीत में।

सुबह की ताज़ा हवा में जब फूलों की खुशबू घुलती है ना, तो मन अपने आप किसी खास की याद से भर जाता है। फूल सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि प्यार और अपनापन भी लेकर आते हैं। और जब कोई फूलों के साथ अपने दिल की बात भेजे, तो उस संदेश की खुशबू बहुत दूर तक जाती है। तो चलिए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत।

दोस्तों, सुबह का वक्त हमें एक खूबसूरत बात सिखाता है। सही संगत और अच्छे रिश्ते जिंदगी के मुश्किल पलों को भी आसान बना देते हैं। किसी अपने के साथ बिताए हुए कुछ पल कभी-कभी पूरे दिन की थकान मिटा देते हैं। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ में उन लोगों के लिए वक्त जरूर निकालिए जिनके साथ रहकर दिल को सुकून मिलता है। आइए इसी मीठे एहसास को सुनते हैं इस गीत में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने पर्यावरण से जुड़े प्रयासों को जन केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने पर बल दिया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में ये बात कही। श्री यादव ने कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप विकासशील देशों की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों की चुनौतियों का उल्लेख किया।
1: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
0: भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल कहा कि भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग ने कल देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया है। आयोग ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं और मतदान फोटो पहचान पत्र के आधार पर कराया जाता है। आयोग ने कहा कि करीब 1 अरब मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। ये तथ्य पत्र अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत की निर्वाचन प्रक्रिया पर टिप्पणी के बाद जारी किया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 2 अक्टूबर से एक महीने का अभियान युवाओं के लिए बैंकिंग शुरू करेंगे। नई दिल्ली में कल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सम्मेलन के समापन भाषण में उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य युवाओं को वित्तीय क्षेत्र से जोड़ना और उनकी वित्तीय यात्रा में मार्गदर्शन करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा एजेंसी ने नए कार्यालय में CISF की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाएगी। ये फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिन के चेन्नई दौरे पर हैं। श्री शाह कल मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। मई में यह अनुमान 6.7% था। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जापान साझेदारी और मजबूत करने पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों से भारत में निवेश और कारोबारी साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। नई दिल्ली में कल जापानी प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा सोच पर आधारित हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को बमबारी की धमकी दी है। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ओमान के ईरान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही को लेकर समझौते के करीब पहुंचने से नाराज हैं। इस बीच ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकल रहे एक जहाज पर मिसाइल से हमला किया गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज नीदरलैंड्स के एम्स्टलफिन में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में पाकिस्तान का सामना करेगी। अगले दौर में जगह बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:11 और 5 सेकंड। भोर सुहानी कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनसे हार मान लेना जिंदगी नहीं, गिरकर संभलना और फिर आगे बढ़ना ही असली जीत है।

दोस्तों, जब दिल सच्चा हो ना तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपने मन की खुशी को मत रोकिए। कृष्ण के बंसी की तरह अपनी आत्मा की आवाज सुनिए और पूरे विश्वास के साथ अपनी राह पर आगे बढ़िए, क्योंकि सच्चे रिश्ते और सच्ची भावनाएं किसी सफाई की मोहताज नहीं होती।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हो चुका है 5:20 और कार्यक्रम चल रहा है भोर सुहानी। मैं हूं आपके साथ मीना चौहान। दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती है, लेकिन समझदारी इसी में है कि हर परिस्थिति के साथ कदम मिलाकर चलते रहें। जो बीत गया उसे मुस्कुराकर जाने दीजिए और जो सामने है उसे पूरे दिल से अपनाइए, क्योंकि जिंदगी को बदलना हमेशा हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे जीने का अंदाज, उसके जीने का अंदाज हमेशा हमारे हाथ में होता है।

हवाओं की तरह जिंदगी भी कभी शांत कभी तेज और कभी अनजानी दिशा में बहती है हमें बस इतना करना है कि हर बदलती हवा के साथ खुद को संभालते हुए आगे बढ़ना है क्योंकि बदलाव से घबराना नहीं उसे अपनाकर आगे बढ़ना ही जिंदगी की खूबसूरती है